चाकिर मैं चुका हूँ समय नहीं भाई जब तो कोई उड़ो जीवन मटर सामा कैन यू कैन यू तुम ना सब लेकिन तो मिले तू कृष्णा Orang tutur sasanar. Angker bang, angker macam apa?